0: Come to TRS at iTac Cash & Carry in the heart of Southall and stock up on a wide range of brands in grocery, chilled, bakery, confectionery, soft drinks, household and cleaning products and much more. Rush to TRS at iTac Cash & Carry Southall. Open 24 hours, 7 days a week. TRS at iTac Cash & Carry Southall. UB2 4AX.
1: दावत एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती आपके लिए लाए हैं £2,000 का हॉलिडे जीतने का मौका साथ में 150 pounds के वन फॉर ऑल रेस्टोरेंट वाउचर्स अभी एंटर कीजिए एट winwithdawat.com या फिर इसका QR कोड आपको जहां भी नजर आए उसे स्कैन कीजिए दिस कॉम्पिटिशन रन्स फ्रॉम 6th मई टू 6th अगस्त यू मस्ट बी 18 और ओवर टू एंटर विथ वन एंट्री पर हाउस होल्ड टीज एंड सीज अप्लाई विजिट winwithdawat.com और याद रखिए राइस इजंट जस्ट राइस Until you've tried Dawat Extra Long Basmati.

माता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा। सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा।

0: एक जश्न, एक मुकाम, एक वादा। हर स्पेशल मोमेंट को चाहिए डायमंड्स की ब्रिलियंस। आइए जॉय आलुकास ब्रिलियंस डायमंड ज्वेलरी शो में और डिस्कवर कीजिए डायमंड और प्रेशियस स्टोन ज्वेलरी के शानदार कलेक्शंस। शॉप नाउ फॉर 1,250 pounds और पाइए फ्री कैशबैक वाउचर। जल्दी कीजिए, ये ऑफर केवल 5 जुलाई तक लागू है। ओनली एट ग्रीन स्ट्रीट लंदन, जॉय आलुकास शोरूम। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। जॉय आलुकास, वर्ल्ड्स फेवरेट ज्वेलर।
1: खाखरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
2: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
1: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
3: UK, get ready for the biggest Bollywood party of the year. Pepe's Piri Piri proudly presents the sensational Queen of Bollywood Beats, Neha Kakkar, live in concert.
4: Mile ho tum humko.
3: And joining the madness, Tony Kakkar. 11th of October 2026, live at the iconic OVO Arena Wembley. An unforgettable night of music, energy and non-stop entertainment awaits you. Tickets are selling fast. Book yours now before it's sold out. Brought to you by Rock On Music, PRC Direct, Embryo Events, UK Event Life and Tutors Valley. Catering partner Ruggison, associate partner Shan Properties, radio partner Sunrise Radio.
5: Looking to boost your career or just starting out? As the expert in online learning, the Open University has over 200 qualifications to choose from, like business, psychology, computing, and many more. With tutor support and courses that fit around your life, getting those in-demand skills employers are looking for isn't so far away. Search the Open University to find out more. The Open University. The future is open.
6: Lidl has some news hot off the grill. The grocer has named us the cheapest supermarket for a barbecue basket, beating 6 other supermarkets, including their loyalty prices. Because when barbecue season heats up, Lidl keeps it cool on prices. Lidl, more to value.
7: Findings based on independent price comparison of 33 barbecue items by the grocer on 5th of June 2026.

साहेबान कदरदान मेहरबान, दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा।

0: celebrating 36 years of excellence. Sunrise and music. This is Sunrise with the latest news headlines. Next. Sunrise Radio. Treat your customers and your team to the rich, authentic taste of Royal Chai, their favourite chai anytime. Get Royal Chai vending machines free. Yes, absolutely free. Perfect for cafes, restaurants, offices, shops, petrol stations and community spaces. Email info@royalchaivending.com. Royal Chai, brewed for business. T's and C's apply.
1: अरे मुझे हेल्प कीजिए ना, मुझे कई गिफ्ट्स चाहिए।
2: तो वसीम ज्वेलर्स आए।
1: और शादी की ज्वेलरी भी चाहिए।
2: तो वसीम ज्वेलर्स आए।
1: और हमारे सोने की वैल्यूएशन।
2: तो वसीम ज्वेलर्स आइए, साउथ हॉल में दो ब्रांचेस के साथ,
3: 90 and 130 द ब्रॉडवे साउथ हॉल। सबसे सोना सदा सोना
2: वसीम ज्वेलर्स।

होता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा।

फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया आबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।